एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रोग्राम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशगान, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लखबीर सिंह लखा और साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना सुनिए।

भगवान जी का वचन आप सुन रहे थे। लखवीर सिंह लखा और साथियों की आवाजें थी। और अब उज्जैन के राजा धीजराज महाकाल का भक्ति गीत किशन भगत और साथियों की आवाजें हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
1: धरती को लोग अपवित्र ही नहीं करते, उसका अंग भंग भी करते हैं, फिर भी वह सब सहती है। इसी कारण उसका नाम क्षमा पड़ा, उसे माँ भी कहा गया। क्षमा का अर्थ दुर्गा भी है, वह स्नेहमयी, सहनशीला तथा उदार हैं। इसी कारण क्षमा को अनुपम तथा महान गुण माना गया। अपने आप पराए किसी से शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक कष्ट, संताप या हानि मिलने पर भी हम प्रतिक्रिया अथवा रोष न करें, उसे भूल जाएं, यही क्षमा है।

0: काल की पांखुरी के समान दया, सहिष्णुता, अक्रोध, नम्रता, अहिंसा आदि क्षमा के अंग हैं। जिस मनुष्य में ये गुण होंगे वही क्षमा की क्षमता रख सकता है। यदि क्षमा न होती तो विश्व संघर्ष तथा संहार से दुखमय हो जाता। अपकार एवं प्रति अपकार से सभी व्यक्ति परस्पर शत्रु हो जाते। क्षमा मैत्री का सूत्र लेकर हृदय से हृदय को गूंथती है। जैसे पानी पत्थर को काट देता है वैसे ही क्षमा करने से दुष्ट का मन भी बदल जाता है। क्षमा में दुर्जन को सज्जन बनाने का पारस गुण है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है दुष्ट भी उसका कुछ नहीं कर सकते। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अत्रणो पतिते वाहनी स्वयमेव प्रणश्यति। आग में तिनका न पड़े तो अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। उसी प्रकार क्षमा करने वाले के समक्ष दुष्ट भी नत हो जाता है। परिवार में मित्र या परिजनों के संग कार्यालय में प्रायः ऐसे सामान्य अवसर आ जाते हैं। साधारण त्रुटियों अथवा बातों पर लोग उग्र हो उठते हैं। भाई भाई, पति पत्नी के मध्य संवाद कटुता का रूप ले लेता है। जरा सी बात पर लोग उठ खड़े होते हैं, फिर नज़रें ही नहीं उठती, हाथ उठ जाते हैं। यहाँ तक कि लड़ने वालों के दुनिया से उठ जाने पर भी द्वेष पलता है, संघर्ष चलता है। अतः क्षमा करें, क्रोध नहीं, कारण रिसतन जरे होए बल हानि। क्षमा का कवच हमारे तन मन की रक्षा करता है, आत्मा के चारों ओर अभेद्य प्राचीर उठाता है। सर्व सिद्धि प्रदा क्षमा अलौकिक शक्ति है। वो दुर्बल का बल है, शक्तिशाली की शोभा है। इससे लोग वश में हो सकते हैं। ज्ञानी विचारशील होता है, वो उन्मुक्त हृदय से किसी के अपराध को भुला सकता है। इसीलिए संस्कृत कवि क्षेमेंद्र ने ज्ञान को भूषण रूप में क्षमा कहा था। ज्ञानी भी रोष में आ सकता है, पर उसकी विचारशीलता उसे संभाल लेती है। एक बार संत ज्ञानदेव भी क्रुद्ध हो गए। उनकी बहन मुक्ता ने तत्काल उन्हें सचेत करते कहा, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा, ज्ञानेश्वर मन के द्वार खोल। ज्ञानेश्वर उसी क्षण सचेत हो गए, बोले, विश्व रोषे झाले बहन, संत मुख बहावे पानी। बहन, संसार भी कुपित हो उठे तो भी संत को पानी बन जाना चाहिए। वशिष्ठ से विश्वामित्र द्वेष करते थे। उन्हें अनेक बार हानि पहुंचाने के साथ विश्वामित्र के पुत्र की हत्या भी कर दी, पर वशिष्ठ के मन में कभी बदले का भाव न आया। एक बार रोष से जलते विश्वामित्र रात में वशिष्ठ को मार डालने पहुँचे। वे कुटीर के बाहर ही थे कि उन्होंने सुना, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति पति से कह रही थी, आज की चंद्रिका कितनी आकर्षक है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हाँ, यह विश्वामित्र के तपसी शीतल है। सुनकर संताप से विश्वामित्र का ताप गल गया, वे द्रवित हो उठे। उन्होंने वशिष्ठ को पुकारा और द्वेष भूलकर गले लगा लिया। क्षमा महानता का लक्षण है। क्षमा बड़ेन को चाहिए, पर साइरस ने कहा था, हम दूसरों को क्षमा कर दें अपने को नहीं। यदि मनुष्य प्रायश्चित न कर स्वयं को क्षमा करेगा तो अपराध दोहराएगा।
1: ये था आज का चिंतन। निवेदक थे डॉक्टर शिवनंदन कपूर। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्रीराम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। गायक स्वर था रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर का। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा।
1: किसान भाई बहनों राम राम। किसान भाई बहनों आज हम कृषि चर्चा में बात करेंगे फसल चक्र का महत्व पर। हर बार जब हम कोई फसल बोवा तो जमीन से पैसों निकालना जैसे छे। जब हमारा पौधा जमीन पर फलज फूलज तो ये मिट्टी से नाइट्रोजन फास्फोरस न पोटेशियम जैसा आवश्यक पोषक तत्व लेज। समय के साथ साथ ये निकासी आपकी मिट्टी का खराब करी दे। भाई बहनों जेका सी पौधा बोना हुई जाए न कम पैदावार वाला हुई जाए जी की फसल न का महत्वपूर्ण पोषक तत्व न का खराब कर।

0: दे। मिट्टी का पोषक तत्व यानी बैंक खाता ख स्वस्थ रखना न पौधा ख फूलना फलना का लेना फसल चक्र अपनावा। फसल चक्र उ कृषि पद्धति छे जहाँ कई प्रकार की फसल न ख एक निश्चित अवधि में योजनाबद्ध तरीका से खेत में लगाई जाए। ये पौधा न का लेना ऐसी तकनीक छे जी की सुनिश्चित करज की मिट्टी में विशिष्ट पोषक तत्व की कमी रहता हुए एकज फसल की उपस्थिति में पनपना वाला कीट न बीमारी नसी ग्रस्त नहीं होए। भाई बहन साल दर साल एकज फसल बोना का बजाय फसल बदला, जैसे कि सूरजमुखी की जड़ न गहरी न सघन मिट्टी का तोड़ी न गहरी परत नसी पोषक तत्व निकालना में मदद करे। किसान भाई बहन गेहूं न जौ जैसा अनाज बोना का पहला सूरजमुखी लगाई सकत, जैका सी आगामी अनाज फसल का लेना मिट्टी की संरचना न पोषक तत्व न की उपलब्धता में वृद्धि होए। असाज गन्ना की फसल का लेना बहुत अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता रहे, एका लेना एक बार गन्ना की कटाई के बाद मिट्टी का नाइट्रोजन की आवश्यकता रहे, एका लेना किसान भाई बहन फल्ली वाली फसल न उगावा तो ये मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करी सकेगा। भाई बहन फसल चक्र पुरानी कृषि पद्धति छे जेमा की एकज भूमि पर योजनाबद्ध क्रम न कई प्रकार की फसल न लगाई जाए। कुछ फसल न मिट्टी का समृद्ध करज तो अन्य छिपे हुआ पोषक तत्व न का उजागर करज। भाई बहन फसल चक्र पोषक तत्व न का संतुलित करज, कई फसल न का पोषक तत्व की जरूरत न आवश्यकता अलग अलग रहे, फसल चक्र अपनाई न विशिष्ट तत्व की कमी का रोकी जा सके। कीट न रोग नियंत्रण भी एकज फसल का बार बार लगाना सी फसल पर हुई जाए न वो अपनो घर बनाई ले, फसल चक्र अपनावना सी उनको जीवन चक्र बाधित हो जाएगा। फसल चक्र मिट्टी का स्वास्थ्य संवर्धन करज, मिट्टी का कटाव को रोकना न फसल की जड़ प्रणाली में शामिल छे। उथला न गहरा जड़ वाला पौधा कई स्तर पर मिट्टी में प्रवेश करी न मिट्टी की सरंध्रता में योगदान करज, मिट्टी का कटाव खरोकज, मक्का घास न छोटा अनाज जैसा अवशेष वाला पौधा शामिल छे जी की फसल में कई अवशेष छोड़ज जी की सुरक्षात्मक बाधा का रूप में कार्य करज न मिट्टी का क्षरण का रोकज। फसल चक्र खरपतवार को भी प्रबंधन करज, फसल चक्र विशेष फसल न पर पनपना वाला खरपतवार न का जीवन चक्र का बाधित करज, कई पादप संप्रदाय भी खरपतवार न का लेना प्रतिस्पर्धा ख कठिन करी दे। स्वस्थ मिट्टी को अर्थ छे खुशहाल न समृद्ध फसल, बेहतर पोषक तत्व न की उपलब्धता, कीट नियंत्रण न मिट्टी की संरचना का साथ फसल चक्र का लाभ सी मिट्टी की वास्तविक क्षमता का बदलना में मदद करे जेका से अच्छी पैदावार हो। फसल चक्र कृषि में जल उपयोग दक्षता का बढ़ावज, ये सक्रिय रूप से कार्बनिक पदार्थ सामग्री का बढ़ाई न मिट्टी का स्वास्थ्य का बढ़ावज, जैसा जैसा कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में बढ़ज मिट्टी की संरचना न जल धारण क्षमता में सुधार हो। फसल चक्र से मिट्टी की गहरी परत न पर पानी का संरक्षित करने की क्षमता पनपना लगज, ये संग्रहित नमी सूखा की स्थिति में एक मूल्यवान भंडार छे जेका सी पौधा न खा एक महत्वपूर्ण जल स्रोत मिले, परिणाम स्वरूप किसान सिंचाई पर अपनी निर्भरता का कम करी सके। भाई बहन मृदा क्षरण एक बढ़तो खतरो एक मूक संकट छे जी की हमारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा का नष्ट करे, गहन कृषि पद्धति न रासायनिक उर्वरक न मोनो कल्चर जल सिंचाई का अत्यधिक उपयोग पर निर्भर करे। फसल चक्र अपनावना सी एम कमी आवज, फसल चक्र एक स्थायी दीर्घकालिक समावेश प्रदान करे, मिट्टी का स्वास्थ्य का बढ़ावा दे, भविष्य का लेना कृषि की नींव का संरक्षित करना का बारे में सोचे। तो भाई बहन हम फसल चक्र अपनावा न अपनी खेती का लाभ को व्यवसाय बनावा। आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज, राम राम।
1: कृषि चर्चा में आज का विषय था फसल चक्र का महत्व, वाचक स्वर सीमा कराहे का, यह आकाशवाणी खंडवा है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या
2: ये धरती ये नदिया ये रैना।
4: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: जी हम श्रोताओं सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता खुश रहने की कला। वार्ताकार होंगी लक्ष्मी सेन। 7:20 पर साप्ताहिक कार्यक्रम चेतना में आज स्वास्थ्य भेंट वार्ता का विषय है स्वस्थ यकृत सुखी जीवन। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, जिनसे बातचीत की है दीपमाला शिंदे ने। 7:30 पर कार्यक्रम सुनहरे पल सुगम संगीत का प्रसारण करेंगे सुबह 8:15 और 10:05 पर।

सुबह 8:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपके मीत ये गीत। सुबह 9 से 10 बजे तक हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:20 पर आप सुन सकते हैं निमाड़ी लोकगीत। दस बजकर 35 पर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम कोपल होगा, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे वार्ता रंगहीनता विकार के लक्षण और जागरूकता। वार्ताकार होंगे प्रहलाद तिरोले, नेत्र चिकित्सा सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छेगांव माखन।

दिन में 11 बजे से शाम 5:30 तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:30 पर आपके लिए निमाड़ी लोक गीतों का प्रसारण करेंगे। शाम 6 बजे सुनिएगा युवाणी कार्यक्रम, जिसमें आज का क्रम होगा साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां। शाम 6:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। शाम 7:21 पर किसानवाणी कार्यक्रम। आज रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर एनएसडी आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण। रात्रि 8:35 से रात्रि 11 बजे तक हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: FM बैंड 101.2 MHz पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
1: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
3: आज की ताजा खबर।
0: ताजा खबर में प्रस्तुत है आज के समाचार पत्रों से ली गई कुछ प्रमुख सुर्खियां। जिले के विभिन्न विकास खंड एवं नगरीय निकायों के मुख्यालय

0: पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर परिषद मुंदी द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे बाल उद्यान में जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचने के उद्देश्य को शुक्रवार को जनपद पंचायत छेगांव माखन के प्रांगण में विशाल जल कल्याण शिविर का आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की शिकायतों एवं जल कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त किए गए। जनपद के सीईओ श्री डाले ने ग्रामीणों से अपील की कि आगामी 14 जून तक जनपद पंचायत छेगांव माखन के प्रांगण में आयोजित इस शिविर में आकर योजनाओं का लाभ लें और अपनी लंबित समस्याओं का निराकरण कराएं। खंडवा शहर को शीघ्र ही एक आधुनिक सुव्यवस्थित एवं बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स एवं रिक्रिएशन सेंटर की सौगात मिलने जा रही है। निमाड़ क्लब समिति द्वारा क्लब परिसर में जिम, कैफे, क्रिकेट टर्फ, पिकल बॉल कोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल पर निविदा प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। समिति का उद्देश्य केवल क्लब संचालन तक सीमित नहीं है बल्कि जिले में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल द्वारा मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तर पर 1 दिवसीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण 16 जून को प्रातः 11 बजे से स्थान जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित होगा। अब खेल समाचार। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। मैच धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। ये अक्टूबर 2023 में वर्ल्ड कप के 5 मुकाबलों के बाद पहला वनडे होगा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार को 3 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से मैनचेस्टर में आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें भिड़ेगी। इसके बाद शाम 7 बजे से इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। अब एक नजर तापमान पर। कल दिन का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा और रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आप सुन रहे थे ताजा खबर। समाचार संकलन किया संजना सोनी ने।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
1: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए वार्ता खुश रहने की कला। वार्ताकार हैं लक्ष्मी सेन।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सेन और आप सुन रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम। चलो मुस्कुराने की आदत डालें, चलो मुस्कुराने की आदत डालें, परेशानियों को थोड़ा सा टालें। जीवन की राह है थोड़ी कठिन, पर मन की रोशनी से उसे उजाला बना लें। हमारा आज का विषय हम सब के दिल से जुड़ा है, एक भावना, एक जरूरत और एक कला, खुश रहने की कला। अक्सर हम सब कहते हैं मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है। क्या वाकई हम खुश हैं? हमारे मन में

सच्ची मुस्कान और सच्चा सुकून है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब कुछ कर रहे हैं, पर शायद खुश रहना ही भूलते जा रहे हैं। सोचिए, क्या हमें वाकई खुशी तब मिलती है जब हम कुछ बड़ी चीजों को हासिल कर लेते हैं, या कोई बच्चा हमें देखकर मुस्कुराता है। दोस्तों, आप जानते हैं, खुशी की भी कुछ छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं। हमने खुशी को

खुशी किसी मंजिल में नहीं, खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि सफर में होती है। खुशी तब मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं, जब हम जिंदगी की छोटी छोटी बातों में धन्यवाद कहना सीखते हैं। आप जानते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ सरल उपाय भी हैं जिन्हें अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अपनाएं तो जिंदगी खुद ब खुद मुस्कुराने लगेगी। जैसे आप सबसे पहले आभार जताइए, हर दिन 2 मिनट अपने आप से कहिए, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार की, अपने शरीर की और इस जीवन की। आप देखिएगा, यह आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। दूसरा, अपनी तुलना मत कीजिए। हर फूल का अपना मौसम होता है, आपका भी आएगा, बस मुस्कुराइए। हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। एक बुजुर्ग की मदद करें, अपने सहकर्मी की सराहना करें, ये छोटे काम आपके दिल को बड़ा बना देते हैं। खुद को समय दीजिए, रोज 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा सुनें, कुछ अच्छा पढ़ें, थोड़ा टहलिए, आपका मन भी आपका साथ देने लगेगा। सबसे जरूरी है क्षमा करना, क्षमा करना सीखिए। माफ करना आपको हल्का महसूस कराता है। जब तक हम मन में बोझ रखते हैं ना, खुशी हमसे बहुत दूर रहती है, इसलिए माफ करिए और आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी और सच्ची कहानी सुनाती हूँ, रूठे मन को मनाना। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में एक सच्ची खुशी छुपी है जिससे हम काफी दूर हैं, हमें पता ही नहीं है। एक बार एक माँ ऑफिस से लौटकर घर आती है, बहुत थकी हुई और परेशान। उसका छोटा बेटा दौड़कर उसके पास आता है और बोलता है, मम्मी देखो, मैंने आपके लिए फूल तोड़े हैं। तो माँ गुस्से से अपने बेटे को बोलती है, तुझे कितनी बार कहा है, फूल मत तोड़ा कर। बच्चा उदास हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। रात को जब माँ सोने आती है तो तकिए के नीचे वही तोड़े गए फूल उसे मिलते हैं और एक छोटे से कागज में लिखा रहता है, माँ आपको खुश करने के लिए तोड़े थे। इतने में माँ रोने लगती है और समझ जाती है कि खुशी तो मेरे घर में ही है, सिर्फ समझने की देरी थी। इस सुंदर सी कहानी पर मुझे एक शेर आपसे शेयर करना है। ढूंढते रहे हम सारी उम्र खुशी को, हम ढूंढते रहे सारी उम्र खुशी को, ना जाने कितने दरवाजे खटखटाए, पर जब रुके और पलट कर देखा, खुशी तो हमारे भीतर ही बैठी मुस्कुराए। तो साथियों, आज का संदेश यही है, खुश रहना कोई जादू नहीं है, बल्कि रोज थोड़ी सी आभार, क्षमा, सादगी और अपनापन का अभ्यास है। हर दिन खुद से कहे, मैं आज खुश रहूंगी, औरों को भी खुश करूंगी। एक पंक्ति आपसे साझा करूंगी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठकर अपने हाथों को देखकर मुस्कुराना सीखे, आपका पूरा दिन शुभ होगा। क्योंकि हमने खुशी को बड़े चीजों से, बड़े घर से, महंगी वस्तुओं से, खास तौर पर सोशल मीडिया में आजकल जो तारीफें हो रही हैं उनसे जोड़ रखा है, पर असली खुशी एक कप चाय में है, बच्चों की, परिवार की खुशी और हंसी में है, तो कभी हमारी माँ की गोद में भी है। आप सभी एक बार अपने आप से प्रश्न करिएगा, क्या कभी आपने बिना वजह मुस्कुराने की कोशिश की है? दिन भर का शोर बंद करके सिर्फ अपने मन की आवाज को सुना है? हमें ऐसी कौन सी बातें हैं या

0: सुकून देती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें अपने आप से करना चाहिए। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है कि हम पुरानी परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ें। सोचिए, क्या वो बातें जिसके लिए आप दुखी थे आज भी उतनी ही जरूरी है? जवाब होगा नहीं। इसलिए एक वादा खुद से करें, मैं आज खुश रहूंगी और किसी को मुस्कुराने की वजह दूंगी। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। तो चलिए इस जीवन को थामते हैं मुस्कान के संग और कहते हैं, हाँ मैं खुश रहना चाहती हूँ हर हाल में। जियो तो ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, और मुस्कुराओ ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। तो दोस्तों, चलिए इन्हीं प्यारे विचारों, मुस्कुराहटों के साथ लक्ष्मी आपसे विदा लेती है। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखें, दूसरों को प्रेरित करें। हम फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
1: विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था खुश रहने की कला। वार्ताकार थी लक्ष्मी सेन। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।
2: तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है?
3: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज समापन। कृषि मंत्रियों की बैठक में साझा दस्तावेज पर लगेगी मुहर। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल दौरे पर, शूटर्स से मुलाकात, स्वच्छता अभियान और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में 120 भारतीय

0: इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा श्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ब्रातिस्लावा में वे स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, कृषि नवाचार और तकनीकी साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सदस्य देश कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए साझा रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं कल हुई चर्चा में श्री चौहान ने कहा,
1: छोटे किसानों की बेहतर आजीविका के लिए, महिलाओं की भागीदारी और खेती में बढ़े इसके लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आधी आबादी तो यहीं रहती है दुनिया की और 43% से ज्यादा उत्पादन यहाँ होता है। आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है। हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस बल को साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को जांच भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा, भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशा विरोधी अभियान को लगातार जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने 2028 के सिंहस्थ पर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। डॉ. सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता को किसी भी तरह से प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा का परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। 62% से अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 57 से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक विद्यार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। सुबह 7:30 बजे से वे शूटिंग एकेडमी में शूटर्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 8 बजे सूरजनगर में स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक परीक्षाएं टैबलेट और कम्प्यूटर आधारित कराई जानी चाहिए, ताकि प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए आसान और जवाबदेह बने। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 47,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती पूरी कर ली है। पीएम सुनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रहण में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 10,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये योजना शहरी पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज से 18 जून तक

वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर जाएंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कल लाभार्थियों को यात्रा टिकट वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं। कल जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी सहित कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजवेस्टन मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 219 रन बनाए, जिसमें डैनी वैट हॉल्स ने शानदार नाबाद 105 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन पर ही सिमट गई। डैनी वैट हॉल्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एक बैठक के दौरान शहर के पास बनाए गए बड़ौदी फूड पार्क में एक ही फर्म को प्लॉट अलॉटमेंट के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। खंडवा में निमाड़ क्लब परिसर में जिम, क्रिकेट टर्फ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। आगर मालवा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित किए गए विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों को शिक्षित कर उनके शैक्षणिक विकास के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेहर कलेक्टर ने खदान से खनिज पदार्थ निकालने के बाद बिना क्लोजर प्रोटोकॉल का अनुपालन किए खुला छोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है। झाबुआ में खरीफ की बोनी शुरू होने से उर्वरकों की मांग बढ़ी है। जिला प्रशासन ई विकास प्रणाली से वितरण पर नजर रखेगा। बैतूल जिले के आदिवासी विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा के रिंगढाना कस्बे में कल रात भीषण आग लग गई और आग ने करीब 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मंडला कलेक्टर की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा की गई। शुजालपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित जनकल्याण शिविर के पहले दिन 46 आवेदन प्राप्त हुए। शुजालपुर में शिविर का आयोजन 13 और 14 जून को भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम चेतना के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य भेंटवार्ता। विषय है स्वस्थ यकृत सुखी जीवन। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव। आपसे बातचीत की है दीपमाला शिंदे ने।
1: श्रोताओं, लीवर यानी यकृत हमारे शरीर का एक तरह से पावर हाउस माना जाता है, जो खाने को पचाकर उससे विटामिन्स, मिनरल्स और खनिज अवशोषित करके शरीर को देना लीवर का काम होता है। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इससे होने वाली बीमारियां, कारण, लक्षण और निदान, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है शासकीय जिला चिकित्सालय खंडवा के मेडिकल ऑफिसर एवं नोडल अधिकारी असंचारी रोग डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्ते, ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, लीवर मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्यों, कैसे?
2: लीवर एक बहुत बड़ा सा अंग है जो हमारे पेट के सीधे हाथ के ऊपरी हिस्से में रहता है, लगभग 1500 ग्राम का रहता है। और लीवर का हमारे शरीर में बहुत उपयोग है, जैसे शुगर जो कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल करता है, प्रोटीन बनाता है, साथ ही जो हम अधिक कैलोरी लेते हैं खाने में, जो अधिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो उसको वसा में कन्वर्ट करता है। साथ में बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीवर के लिए कभी बूढ़ा नहीं होता है, इसीलिए कोई 80 साल का व्यक्ति भी होगा तो वो लीवर अपना अंगदान कर सकता है।
1: जी, आपने बताया।

0: के महत्वपूर्ण अंग हैं ये।
1: जी जी।
0: तो हम इस महत्वपूर्ण अंग को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं?
1: तीन चीज़ें हैं जो लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। एक तो अल्कोहल है यानी शराब, दूसरा वायरसेस हैं, और जो खाने में हम अत्यधिक फैट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं।
0: जी, अभी जो फैटी लीवर जो आमतौर पर हम सुन रहे हैं,
1: जी जी,
0: तो ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है।
1: जी जी।
0: तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है?
1: देखिए, अभी तक लोगों का ये मानना था कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है जो वयस्कों में होती है, वो दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप वन और टाइप टू। जो टाइप वन डायबिटीज़ होती है जनरली 20 साल तक की उम्र के लोगों में होती है, और जो बड़ों में होती है टाइप टू डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी, वो अभी तक माना जाता था कि पैनक्रियास के कारण होती है। अभी जो शोध हुआ है उसमें हमको ये पता चलता है कि बीमारी पहले लीवर में चालू होती है। जो हम अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं खाने में, वो फैट के रूप में जमा होने लग जाता है, और जो लीवर का नॉर्मल फंक्शन है उसको कम कर देता है। शुगर जो कंट्रोल होती है वो लीवर से कंट्रोल होती है, शुगर कंट्रोल नहीं होती है और इंसुलिन शरीर में अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे फिर पैनक्रियास काम करना बंद करता है। तो एक ये बहुत बड़ा अच्छा नया कंसेप्ट है कि मधुमेह का जो रोग है वो लीवर से जनित है, ना कि पैनक्रियास से।
0: कुछ खराब आदतें होती हैं जिससे कहते हैं कि लीवर खराब हो गया है, लीवर खराब हो सकता है, कैसे हानि पहुंचाती हैं खराब आदतें को?
1: जैसे जितना हमको रोज कैलोरी लेना है उससे ज़्यादा कैलोरी अगर हम खाते हैं तो वसा में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में जमा होने लग जाता है। जैसे हम लोग को एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट रहती है। नॉर्मली जैसे अगर हम देखें तो अगर 1800 से 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट किसी आम व्यक्ति को, अगर वो उससे ज़्यादा खा रहा है तो वो जो ज़्यादा खा रहा है वो समय के साथ में धीरे धीरे 5 से 10 साल में वो धीरे धीरे फैट जमा होने लग जाता है लीवर में, और फिर लीवर का जो काम करना है, जो साधारण तरीके से काम करता है लीवर, उसको गड़बड़ कर देता है वो, और फिर धीरे धीरे लीवर में फैट जमा होने लग जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, और समय के साथ धीरे धीरे शुगर गड़बड़ होने लग जाती है शरीर में, डायबिटीज होने का चांस रहता है, और लंबे समय में लीवर में कैंसर होने का भी चांस रहता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि शराब के कारण ही लीवर में दिक्कत ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम और कैंसर और सिरोसिस जो होता है वो अपने गलत खान पान के कारण होता है, ना कि अल्कोहल से। अल्कोहल के मामले हमको दिखते हैं लेकिन वो बहुत कम रहते हैं।
0: आपने लीवर सिरोसिस की बात की।
1: जी जी।
0: तो थोड़ा इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: लंबे समय तक फैट जैसे जमा रहता है लीवर में, धीरे धीरे लीवर का साइज बढ़ने लग जाता है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, और उसकी कोशिकाओं की जगह फाइब्रस टिश्यू जो सही से काम नहीं करता है वो जमा होने लग जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं उसकी जो संरचना है वो समय के साथ में चेंज हो जाती है लीवर की, उसकी कोशिकाएं खत्म होके दूसरा टिश्यू उसकी जगह उतक स्थान ले लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि सिरोसिस हो गई। फिर सिरोसिस लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर लीवर कैंसर बनने का चांस रहता है।
0: जी, हमारा लीवर शरीर में स्वस्थ है नहीं है का अंदाजा लगाने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं क्या?
1: जी, एक बहुत साधारण है, अगर कोई महिला है उसका जो कमर का नाप है नाभि के लेवल पे अगर अपन देखें तो 80 से सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पुरुष में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है और साथ में एक बॉडी मास इंडेक्स करके डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं, वो अगर 23 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में ये हो सकता है कि आपके लीवर में फैट अत्यधिक हो। उसका पता लगाने के लिए एक फाइब्रो FIB-4 स्कोर कैलकुलेट होता है जो मेडिकल ऑफिसर करते हैं, उसके लिए हम लोग को 2-3 चीज़ें लगती है, जैसे आपकी उम्र कितनी है, प्लेटिलेट काउंट कितना है, और AST और ALT करके 2 लैब टेस्ट कराने पड़ते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग स्कोर कैलकुलेट करते हैं। अगर वो स्कोर 1.3 से ज़्यादा है, 1.3 से ज़्यादा है, तो आपको लीवर में फैट होने का अंदेशा है। उस केस में फिर एक जांच और होती है, फाइब्रो स्कैन करके बोलते हैं उसे, वो जांच करा के और उसको कंफर्म किया जाता है।
0: जी, भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं डेली हमारे रूटीन में।
1: जी जी।
0: तो कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं?
1: हम खाने में कोशिश करें कि थाली में जो खाना लेते हैं उसमें हम लोग हरी सब्जियाँ, फल, ठीक है, वो इंक्लूड करें, और हम लोग थाली ऐसी बनाए कि हमारी थाली में आधा सब्जी और सलाद होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें दिन में 5 बार सब्जी लें और फल लें। जैसे कि आप अगर सुबह शाम 2 बार सब्जी खा रहे हैं तो 2 बार तो ये हो गया, अगर आप सलाद थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो 4 बार ये हो गया, और अगर आप फल का छोटा टुकड़ा भी शरीर ले रहे हैं दिन भर में तो 5 बार हो जाता है। इस तरीके से आप अपने फल सब्जियाँ इस पर ध्यान दें। जो अपना प्रोटीन है उस पर ध्यान देना चाहिए, दाल हमारी थाली में होनी चाहिए, और जो रोटी है वो अपने कम से कम, मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो कम रखना चाहिए। अगर जैसे आप कोई नॉर्मल आदमी 2 या 3 रोटी को लग रही है उसके उम्र के हिसाब से, अगर वो 1 रोटी खाना

0: अगर चावल खाना चाहता है तो एक रोटी कम करके थोड़ा चावल खा ले। तो अपने को थाली में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि अपन 5-7-10 रोटी खा रहे और दाल खा रहे और सब्जी और बाकी कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें फिर समय के साथ में जो आप एक्सेस मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो वो धीरे धीरे लीवर उसको चर्बी बनाता है लीवर में।
1: जी, लीवर ट्रांसप्लांट क्यों होते हैं? जी, अंगदान भी
0: जी,
1: होता
0: जी,
1: है
0: इसका। जी जी,
1: थोड़ा उस बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: लीवर ट्रांसप्लांट उन केसेस में करते हैं जहाँ पे लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है या कैंसर के पेशेंट है। लीवर ये अब हमको तो पहले ही प्रयास करना है कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि हमको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़े, अपना लीवर स्वस्थ रखे। और लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो उसमें इतना आसान तो नहीं होता है, उसमें रजिस्ट्री करनी पड़ती है, ऑर्गन डोनर रजिस्ट्री रहती है इंडिया में, उसकी वेबसाइट है, उसमें आपका फिर चेक करते हैं ब्लड और दूसरी जाँचें करते हैं जिससे चेक करते हैं कि आपका लीवर अगर कोई ऐसा डोनर है जो आप मैच कर रहा है तो फिर वो आपको दे सकते हैं। जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ पे MP और गवर्नर जी हैं, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डॉक्टर शिव कुमार सीरीन के साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज दिल्ली में। वो इंस्टीट्यूट में लीवर ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: सामान्य दिनों में हम किस प्रकार से जांच कर सकते
0: हैं? सामान्य दिनों में जो भी जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है फिप फोर स्कोर कैलकुलेट करने की। उसमें आपका उम्र चाहिए रहती है, प्लेटलेट काउंट कितना है और ALT और AST दो चीज़ें होती है लीवर की जाँच करते, वो सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला खंडवा में उपलब्ध है। आप वहाँ पे जाके अपना स्कोर कैलकुलेट करा सकते हैं। अगर 1.3 से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो।
1: अभी बीच में हमने बात की थी लीवर कैंसर की, आपने बताया था।
0: जी जी।
1: तो ये लीवर कैंसर कैसे हो जाता है?
0: लीवर कैंसर जो शराब सेवन करते लंबे समय से उनका समय के साथ में लीवर खराब होता जाता है। जैसा मैंने बताया था कि वहाँ उसके जो ऊतक है नॉर्मल जो कोशिकाएं हैं वो फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाती हैं, उसी तरीके से वायरसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, वो भी लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से जो फैटी लीवर की हमने बात की, फैटी लीवर में जो हम खान पान में ज्यादा अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो जमा फैट के रूप में जमा होता है समय के साथ में और फिर उसमें सिरोसिस हो जाती है लीवर में और फिर कैंसर होने का चांस रहता है। तो तीनों तरीके से कैंसर लंबे समय में हो सकता है। सबसे ज्यादा कैंसर लेकिन अपने खान पान में गड़बड़ी के कारण ही होते हैं लीवर के।
1: हमारा लीवर स्वस्थ है या नहीं है, हम घर पे किस प्रकार से जाँच कर सकते हैं?
0: घर पे इसकी आपका कमर का नाप है बहुत इजी है, जो अपना टेलर वाला टेप रहता है, इंच टेप रहता है, उसमें सेंटीमीटर की भी रीडिंग भी रहता है मार्किंग, उसमें आप चेक कर सकते हैं आपका कमर का गोलाई जो है। अगर आप नाभि के लेवल पे देखें तो अगर महिला में 80 से कम होना चाहिए और पुरुषों में 90 से कम होना चाहिए। ये बहुत सिंपल टेस्ट है, ये आप कर सकते हैं।
1: हमारे शरीर में अगर कोई से लक्षण आते हैं जो कि हमारा लीवर खराब हो रहा है,
0: जी जी,
1: तो शरीर में ऐसा कोई लक्षण बताता है हमारे शरीर?
0: थकान होना और शुगर कंट्रोल में नहीं होना, जो भी डायबिटीज पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको फैटी लीवर होगा, क्योंकि फैटी लीवर ही आगे जाके अपने पेनक्रियास पे प्रेशर डालता है और फिर अपना डायबिटीज़ होती है। ये दो चीज़ें हो गई, थकान होना और खासकर पेट के इर्द गिर्द अगर चर्बी ज़्यादा है वो चीज़, ये चीज़ से हम लोग पता कर सकते हैं। लीवर जो अपना पेट का ऊपरी हिस्सा है सीधे हाथ में वहाँ पे ऊपर में अगर लंबे समय से दर्द बना हुआ रह रहा है आपको, तो ये सब चीज़ें लक्षण हैं उसके।
1: डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: साप्ताहिक कार्यक्रम चेतना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य भेंटवार्ता, विषय था स्वस्थ यकृत सुखी जीवन। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, आपसे बातचीत की दीपमाला शिंदे ने। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण। तो

0: इस दीवानगी को यूं ही बनाए रखें, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनारे पल।

लेकिन कुछ नगमे ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी बार भी सुनो उतने ही नए लगते हैं। आज का सफरनामा कुछ ऐसे ही सदाबहार गानों के नाम है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत मालवीय। कहते हैं कि जब दिल की बात लफ्जों में बयां न हो तो संगीत सहारा बनता है। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं किशोरदा की उस मखमली आवाज से जो सीधे दिल के पार उतरती है। फिल्म अजनबी का यह गाना राजेश खन्ना और परवीन बॉबी पर फिल्माया गया है। सुनिए और खो जाइए।

0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

न दौर याद आ जाता है। वैसे पहली मुलाकात का वो जादू ही कुछ और होता है, लेकिन जनाब जब वो मुलाकात धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत मोहब्बत में बदल जाए तो फिर दिल बस यही कहता है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताऊं तो आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने इस गाने को दो अलग अलग वर्जन में रिकॉर्ड किया था, एक किशोरदा की आवाज़ में और एक परवीन सुल्ताना जी की शास्त्रीय आवाज़ में। दोनों ही वर्जन ने इतिहास रच दिया। आज सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये लाजवाब नगमा।

संगीत में वो ताकत है जो बिना कहे सब कुछ कह जाती है, और जब बात मोहब्बत की हो और बैकग्राउंड में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ घुल जाए तो मानो मौसम खुद ब खुद रुमानी हो जाता है। शमी कपूर साहब का वो अंदाज़, कश्मीर की हसीन वादियाँ और रफ़ी साहब की वो बेमिसाल तान जिसमें वो गाते हैं, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चलिए आपको ले चलते हैं सीधे डल झील के शिकारे पर, सुनिए ये सदाबहार गीत।

इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू ही ऐसा है कि पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ रोमानियत का नाम नहीं है। ज़िंदगी कभी कभी हमें कुछ गहरे फ़लसफ़े भी सिखा जाती है, और जब ज़िंदगी के फ़लसफ़ों को आनंद बख्शी साहब ने अपने शब्दों में पिरोया और आनंद जी कल्याण जी के संगीत ने उसे संवारा, तो एक ऐसा गाना बना जो आज भी हर टूटते हुए दिल को हौसला देता है। राजेश खन्ना साहब की फिल्म सफ़र का ये गाना हमें सिखाता है कि रास्ते चाहे जैसे भी हो, सफ़र चलते रहना चाहिए। आइए सुनते हैं।

वाकई ज़िंदगी की पहेली को समझना आसान नहीं है, लेकिन इस सफ़र को खूबसूरत बनाती हैं यादें। कुछ यादें ऐसे होती हैं जो वक्त की धूल में भी धुंधली नहीं पड़ती। चलिए आपको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की उस दौर में जहाँ सादगी ही सबसे बड़ा हुस्न थी। मुकेश जी की वो आवाज़ जिसमें एक अजीब सा ठहरा और दर्द है, फिल्म अनाड़ी में राज कपूर साहब पर फिल्माया गया वो गीत जो हमें जीना सिखाता है।

बिल्कुल सही कहा मुकेश जी ने, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही तो असली जिंदगी है। और श्रोताओं, कार्यक्रम के सफर को थामने का वक्त आन पड़ा है, लेकिन कोई भी प्रोग्राम, कोई संगीत वाला प्रोग्राम इस जादुई आवाज़ के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। सुनिए यह सदाबहार नगमा लता मंगेशकर जी की आवाज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजे ही समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के

0: निस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन

0: उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार

0: आज से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध।

0: आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस समय सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के आज के इस समय के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली के गाए कुछ नगमे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत और कलाकार थे लक्की अली। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
2: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
3: इश्क़ दी चाशने, ओ मीठी मीठी चाशने।
1: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: ओ मीठी मीठी चाशने।
0: सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
4: आपके मीत ये गीत।
0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रशांत मालवीय का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपके मीत ये गीत में।

कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवाएंगे नगीना फिल्म का, और इस नगीना फिल्म के गाने को मोहम्मद अजीज ने अपनी आवाज दी, पसंद आप सभी ने किया। खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी कामेश और भारती यादव, बड़वा से भारती कुशवाहा, मनीष पार्थ और अणवी, बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन, गंडई पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन, राजेंद्र जी और इनके साथी, सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, दीपक, सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव, कृतिका, काव्यांशी और प्रभा कटारिया। मोटकमापी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति शुभम, देवी किशन, भावना मन, मानस और कनिका पटेल, मऊनाथ, भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत गवाणकर और एकांश गवाणकर, बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, आसमा खातून, राज अंसारी, असलम अंसारी, आफ्ताब और मेराज, डुमराव से डब्लू अंसारी, सोना मदीबा और

अली मोहम्मद, खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे, सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा, तेलहारा से प्रकाश पुरारकर, नर्मदा पुरारकर और सुजाता, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन और आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशव खुराना, भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल और पूजा परिहार, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, किशनगंज से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया, वड़िंग खेड़ा से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती, नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत और आराध्या साहू, सहारनपुर से जॉन डिस्ट्रो, रोजी डिस्ट्रो, पर्ल और विलिस, जाखोद से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खट्टक। चलिए आपको सुनवाते हैं नगीना फिल्म का गाना, मोहम्मद अजीज की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गाना लिखा आनंद बख्शी ने।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे कार्यक्रम के बाकी गाने उसके बाद होंगे।
1: हमारे श्रोता कार्यक्रम में इस बार आपकी मुलाकात होगी सुशील कुमार शर्मा से।
2: जो सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई देती है, उस मुस्कान के लिए मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता।
1: तो सुनना ना भूलिएगा हमारी श्रोता इस रविवार सुबह 7 बजे।

इस अंतराल के पहले आपको हमने नगीना फिल्म का गाना सुनवाया था आपकी पसंद पर, और अब जो गाना है वो फिल्म है राज। अलका याग्निक की आवाज है, नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा है गाना आपको सुनवाएंगे। पसंद आप सभी श्रोताओं ने किया, नाम बताते हैं। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। मंडी डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग। गंगानगर से मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका और ममता। गंग जला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता, योगेश और मुस्कान मालाकार। मोटक्का माफी जिला खंडवा से दयाचंद सेन, मिशीलाल जी सेन, प्रेम भाई सेन, छाया भाई, पूजा और योगेश सेन। मोताला से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर। मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मेंडी शर्मा, सोरो, साइना और निवान शर्मा। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता और अनिकेत। मैसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत अकरम, वसीम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरान बाबू, हमजा बाबू, शाजिया, नाजिया, नूरी, बच्चू शेख और चीना शेख। जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, आलिया आयान बाबू। पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा गोड़के हैं। खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू देवराज महोबिया, सपना शिवी सलोनी, पेंटर बाबू, अनिल सोनी और सुदामा। सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मोसा भाईजान, राजकुमार बोडाना। अदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा है। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार और जयश्री। सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सावले। परभणी से रूपेश संगई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश। खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बेस, रिया रोहन और अंगद ठाकुर हैं। ओमकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, ओम सेन, कुमारी सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, ऋषि सेन और द्वारिका बाई सेन। चलिए आप सभी की पसंद पर राज फिल्म का ये गाना अलका याग्निक की आवाज।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण कार्यक्रम है आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ जाते हैं। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम बताते हैं, उसके पहले बताते हैं कौन सा गाना है, किस फिल्म का है। आशिकी फिल्म का गाना, कुमार सानू की आवाज, समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीत। पसंद आप सभी ने किया। इंदौर लिंबोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी। फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव, ईशान और कार्तिक। टोला तेघरा बेगूसराय से इस्माइल आजाद, नन्हे बाबू, अदिबा अफसरी, कमर जहां, शाह आलम और भाई वली आलम। छोटी बलिया से नूर आयशा, अहमद बागबान, दुखना रानी, जूही इकबाल और सदफ अहमद फुलवाले। खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और फाल्गुनी जोशी। करजत मुंबई से अहमद मोगा, सुरेश मोगा और अजीत मोगा। दिल्ली से अहमद हसन, सलमा हसन और गुलाब हसन। बड़वा से प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली। खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता कटारे, उदय कटारे, उज्जवल और मितांश कटारे। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। नरवेल से पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल। आष्टी जालना से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरद, सैयद निजामुद्दीन और रामभाव तांदले। कापसहेड़ा बॉर्डर दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा प्रवीण। छोटी बलिया से नूर आयशा, अहमद बागबान, नबासी आशु अहमद और दुखना रानी। बेगूसराय से अदीबा अफसरी, इस्माइल और शाहो और भाई वली आलम। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आशमा दीपक और अनुश्री। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा अनस और रेहान। अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना तई, हीरावन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और महेश। बोरखेड़ा पितरामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। गिरगांव से गजानन नादरे, मारुतराव पांचाल। खंडवा से रफीक पवार, बेंजिर कोसर, मोहम्मद साबिक, साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर। सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा

मलिक और माही मलिक, बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और अफजल इब्राहिम, बीड़ से किशन सपकाल, आशा साईराज, सोनिया सपकाल और विशाल, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, परी खुशी, वंदना स्वाति और प्रयाग चौधरी, ग्राम धुलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून।

0: इसके साथ ही आपके मीत एकित कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
3: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
2: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब से लेकर 10 बजे तक हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

और रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। विशाल भारद्वाज की आवाज में गुलजार की रचना थी, विशाल शेखर का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पालोमी की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामू गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमजोर हो रहे हैं।

हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पालोमी की आवाज़ थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है।

0: रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेशे प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी। इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयन चिशाड़ा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवद की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों गा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत महेश्वरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने किसानों से अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग न करने और मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले में कृषि के क्षेत्र में एक और अहम पहल की गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिले के कृषि रोडमैप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उद्यानिकी, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने टाइम लिमिट बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण और लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 100% पूरी करने और ई विकास टोकन प्रणाली की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी रायसेन में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने ग्राम सुरई से लगे वन क्षेत्र में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। करीब 35 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त भूमि पर 35,000 पौधे रोपे जा रहे हैं, जिनमें सागौन और मिश्रित प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। रायसेन के ऐतिहासिक किले की पहाड़ी पर इन दिनों बाघ का विचरण देखा जा रहा है। वन विभाग ने आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों से किला पहाड़ी के आसपास न जाने की अपील की है। वन विभाग की टीम बाघ की लगातार निगरानी कर रही है। मानव

प्राणी टकराव से बचाव के लिए सतर्क हैं। उप मंडलाधिकारी ने बताया कि वन्य प्राणी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वन्य प्राणी अधिनियम का उल्लंघन है। मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण को लेकर भी जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अभय वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर रायसेन जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिले में 0 से 5 साल तक के 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन जिले के सभी नगरीय निकायों में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बेगमगंज और सिलवानी में शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन 18 जून तक चल रही है। 10वीं पास विद्यार्थी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रवेश ले सकते हैं।

0: में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिले में 0 से 5 साल तक के 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन जिले के सभी नगरीय निकायों में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बेगमगंज और सिलवानी में शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन 18 जून तक चल रही है। 10वीं पास विद्यार्थी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिले में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियों को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। जिले में 1 जून को रेडक्रॉस समिति द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शिविर लगाकर गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाएं वितरित की गयी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत जिला रायसेन द्वारा सिलवानी में साइक्लोथॉन और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस और हरित पर्यावरण का संदेश दिया। रायसेन जिले के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही खास ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल का मकसद है कि शिक्षक और कर्मचारी ये समझ सके कि यदि कोई विद्यार्थी मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो तो उसे समय पर पहचान कर मदद की जा सके। ये ट्रेनिंग 6 जुलाई को सरकारी कॉलेजों के लिए, 7 जुलाई को प्राइवेट कॉलेजों के लिए और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन आयोजित होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत महेश्वरी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: रायसेन जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मेहदी हसन की और उनकी गायी कुछ गजल आपको सुनवाएंगे।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ कानों को नहीं छूती बल्कि सीधे रूह में उतर जाती है। एक ऐसी आवाज़ जिसने गज़ल को महलों के दीवाने खास से निकालकर हर आम और खास के दिल तक पहुंचा दिया। जी हाँ, आज की हमारी इस बेहद खास प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं शहंशाह गज़ल खान साहब मेहदी हसन की।

राजस्थान के झुंझुनू जिले के लूना गांव की मिट्टी से शुरू हुआ सुरों का यह सफर सरहदों को पार कर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना गया। मेहदी हसन साहब की गायकी में जो ठहराव, जो संजीदगी और जो कोशिश थी वो मिसाल है। सुर इस कदर उनके काबू में थे कि सुनने वाला बस सम्मोहित हो जाता था। आज 13 जून मेहदी हसन की

0: साल 2012 यानी 2012 की तारीख 13 जून यानी आज ही के दिन भले ही खान साहब इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी आवाज़ के जरिए वो आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमेशा रहेंगे। जब भी दुनिया में गज़ल का नाम लिया जाएगा, मेहदी हसन साहब का नाम सबसे पहले अदब के साथ लिया जाएगा।
1: 1958 की कंपोजिशन मेरी गज़ल और आपकी हौसला अफजाई से वो आज भी जिंदा है गज़ल। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, फरमाइश है ये, मैं इसको पेश करूँ।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हमने आपको मेहदी हसन की गायी कुछ गजलें सुनाई। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: एहसास की जो जुबान बन गए,
0: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहे निवाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय दिन के 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। श्रोताओं, निमाड़ी लोकगीत में कलाकार राजाराम गोलकर और साथी।

0: भगवान कृष्ण भगवान की जय।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत, कलाकार थे राजाराम गोलकर और साथी, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।

निमाड़ी लोकगीत में आज के कलाकार थे राजा राम गोलकर और साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम कोपल।

गोपाल कार्यक्रममा हाम्रा सबै नन्ना मुन्ना बालकनको स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लैन उपस्थित छ आपकी अन्तिम बाला बहिन, आप सबका मारी राम राम। बच्चरण, प्रकृति न हर जीव की रचना असी बनेज जो कि अपनी रक्षा करने की क्षमता राखज, चाहे वो पशु होए या रेंगता जीव होए, कीट पतंगा होए या कोई जो जीव छे, वो कोई अपना नुकीला अंग न का माध्यम से अपनो बचाव करज, तो कोई अपना द्वारा स्त्रावित द्रव या गंध से। बच्चरण, हमलावर से अपनी रक्षा करनो सबको अधिकार छे। अगर हम अपनी बात करा तो हम सब कभी अपनी आत्मरक्षा करने की कला आनो चाहिए। पढ़ाई का साथ साथ हमका ऐसी कला न भी सीखनो चाहिए जो कि हमका जीवन में कभी भी काम आई सके। शस्त्र विद्या, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, ये सब हमारी पौराणिक संस्कृति में समाहित छे, जेका आज हम भूलता जाई रहा। पर आज का समय का देखते हुए हर बच्चा का अपनी रक्षा करने का गुर सीखनो अत्यंत महत्वपूर्ण छे। अच्छा बच्चरण, ई कला सीखने से हम शारीरिक हमला से तो अपनो बचाव करी सकन, साथ ही लगातार अभ्यास से हम शारीरिक न मानसिक रूप से मजबूत बनाए, न हमारो जीवन अनुशासित होज, हमारो आत्मविश्वास भी बढ़ज। किसी भी प्रकार का आत्मरक्षा प्रशिक्षण, चाहे वो कुश्ती का दाव पेच होए, कुंफू कराटा, इनमें बहुत अधिक शारीरिक मेहनत लगज, न दिमाग की सक्रियता भी जरूरी छे। एको परिणाम ये हो बच्चरण कि हमारो मन न मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होज, शरीर में चपलता का साथ संतुलन बनाए रखनो, लचीलोपन, हृदय गति, फूर्ति न प्रतिक्रिया शक्ति विकसित होज, न हमारी दूसरा न पर निर्भरता भी कम होज। खास करी न बालिका न का लेना अपने स्वयं की रक्षा की कला सीखनो बहुत ज्यादा जरूरी छे, ताकि वो कोई भी विपरीत परिस्थिति आना पर अपनो बचाव कर सक। अच्छा, ये सब सीखना का लेना हमका मन न शरीर दोए नसी स्वस्थ रहनु भी बहुत जरूरी छे। शरीर का स्वस्थ न मजबूत रखना का लेना अपनो खान पान भी अच्छो न पौष्टिक होनो चाहिए। हमारा आहार का हमेशा संतुलित न पोषक तत्व नसी भरपूर होनो चाहिए। मन का मजबूत बनावना का लेना अच्छी अच्छी किताब न को पाठन, ऐसा प्रेरणादायक व्यक्तित्व न का पढ़ा जिनका से हमका प्रेरणा मिला। हमारा देश की वीरांगना न इनका बारे में पढ़ा, उनका आदर्श न ख, उनका सिद्धांत न ख समझा, न अपना जीवन में उतारा। बच्चन उन कई संस्थान गांव न सिले न शहर तक का बच्चा बच्ची न ख आत्मरक्षा करने को प्रशिक्षण दई रहा।

0: कार्यक्रम भी आयोजित करी रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम में भाग लेवा, अपनी रक्षा करने की कला का जरूर सीखा, ताकि हम अपने साथ दूसरा न की मदद भी कर सका न सुरक्षित रह सका। अपना विद्यालय में भी खेलकूद का कालखंड में सक्रिय रहवा, न पढ़ाई का साथ साथ खेलकूद न दूसरी गतिविधि में भी भाग लेना, हम अपना शरीर का स्वस्थ न फुर्तीलो रख सकें। तो बच्चन, आप हमारी इन बात को जरूर ध्यान रखोगे नहीं? बच्चन, हम ये तो आपसे हमारी बातचीत हुई न, आज यानी कि 13 जून का दिन का दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता विकार जागरूकता दिवस का रूप में मनाया जाए, क्योंकि इन रोग से ग्रसित मरीज न का भेदभाव सहन पड़ज, ऐसा व्यक्ति तनाव से मुक्त रह सका न सामान्य जीवन जी सका, एक लेना इन रोग का प्रति सबका जानकारी होना बहुत जरूरी छे। तो आओ इन विषय पर अधिक जानकारी सुना प्रहलाद तिरोले जी से, नेत्र चिकित्सा सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छैगांव माखन से। तो बच्चन, ध्यान से सुन जो ये वार्ता।
1: प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, आपने कभी अपने आसपास या गली मोहल्ले या गांव में ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी आंखें भूरी, त्वचा भूरी और बालों का रंग भी भूरा हो, उन्हें धूप में कम दिखाई देता हो, आंखें छोटी करके देखते हों? कभी देखा है ऐसे बच्चों को या किसी व्यक्ति को? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं उन्हें एक प्रकार का शारीरिक विकार होता है जिसे हम एल्बिनिज्म या रंगहीनता, जो कि एक वंशानुगत डिसऑर्डर का एक समूह है, यह एक प्रकार का रोग है जो त्वचा, आँखों और बालों से संबंधित है। इसमें एक प्रकार का मेलोनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो शरीर में जिसकी कमी हो जाती है, जिससे बालों और त्वचा और आँखों का रंग पीला हो सकता है या सफ़ेद और भूरा भी हो सकता है। मेलानिन पिगमेंट त्वचा का रंग निर्धारित करता है, जो कि जन्म से भी इसकी कमी हो सकती है या फिर बाद में भी इस पिगमेंट की कमी आ सकती है। यह पिगमेंट ऑप्टिक नर्व, जो आँखों की नसें होती है, उसके विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए एल्बिनिज्म से ग्रसित लोगों को दृष्टि संबंधी विकार भी हो सकते हैं। तो बच्चों, अपन देखते हैं कि इसका कारण क्या है। एल्बिनिज्म एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यह पेरेंट के जरिए बच्चों को हो सकता है। इसके अलावा मेलानिन पिगमेंट जब घटने लगता है तब यह बीमारी सामने दिखाई देती है। इसके लक्षणों में हम देखें तो रंगहीनता से ग्रस्त व्यक्तियों को ट्रैफिक सिग्नल देखने में या फिर लाल और हरे रंग को विभेद करने में सक्षम नहीं हो पाता व्यक्ति। जैसे कि टमाटर लाल होता है, मटर हरी होती है, तो उसे टमाटर और मटर दोनों ब्लैक एंड वाइट दिखाई देंगे। या फिर जब वो कपड़े पसंद करेगा या कपड़ों की मैचिंग करनी होगी तो उसे वो कपड़े भी ब्लैक एंड वाइट दिखाई देंगे। धूप में निकलने पर आँखों का बंद होना, सामान्य दृष्टि का कम हो जाना, अधिक धूप में अगर रहें तो त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। अतः यह वंशानुगत रोग को जो है हम किसी प्रकार से उपचारित नहीं कर सकते, इसका किसी प्रकार का इलाज संभव नहीं है। प्रतिवर्ष 13 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एल्बिनिज्म को लेकर जागरूकता फैलाना। समाज में इस रोग को लेकर कई गलत धारणाएँ फैली हुई हैं, जिसके कारण ये मानसिक तनाव में होते हैं और समाज में एक प्रकार की इन्हें असमंजस की स्थिति होती है। अतः इन्हें मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर और इनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए और इन्हें मान सम्मान समाज में देना चाहिए। अतः इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को सद्भावना बनाए रखें। बच्चों, इस प्रकार के व्यक्ति या बच्चे आपको अगर दिखाई दें या आपके क्लास में या आपके खेल के मैदान में मिलें तो उनसे सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें, ताकि वे भी अपना एक सामान्य जीवन जी सकें।
2: तो बच्चों, इसके अलावा आप सभी को अपनी आँखों की सुरक्षा

के लिए कुछ जानकारी रखना अति आवश्यक है, जैसे कि आप सभी को विटामिन ए से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता, पीले फल, इस प्रकार की चीज़ों के सेवन से शरीर में पर्याप्त विटामिन ए प्राप्त होता है, जिससे हमारी आँखें और सुरक्षित और मजबूत बनती है। और आजकल देखने में आता है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें जो है इससे सतर्क रहना चाहिए। उनके माता पिता को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चा अगर मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है तो अभी से उसकी रोकथाम करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक किरणें आँखों की रोशनी को प्रभावित कर सकती हैं, या तो उन्हें मोटा चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, या आँखों के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। अतः उसका उपयोग जो है समुचित मात्रा में और रुक रुक कर आधे आधे घंटे के अंतराल से 1 घंटे से ज़्यादा ना करें, ताकि आंखें सुरक्षित रहें। इसके अलावा नुकीली चीज़ों से ना खेलें, तीर कमान, गिल्ली डंडा जैसे, या पेन प्रकार पेंसिल, इनका उपयोग आप अपने खेल में शामिल ना करें, जिससे कि दुर्घटना हो सके। आंखों की दुर्घटना से बचने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, बच्चों आपको सदैव जो है अपनी पुस्तक या किताब में जो पढ़ाई करते हैं तो उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर ही उसका अध्ययन करें, या लिखने का कार्य हो तो 25 सेंटीमीटर दूर से करें। कई बच्चे आँखों के पास पुस्तक को चिपका लेते हैं, जिससे दृष्टि दोष होने की संभावना रहती है। बच्चों यदि आपको देखने में, दूर का देखने में, पास का देखने में किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, उसके बाद अपने हॉस्पिटल में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवानी चाहिए, ताकि उस रोग को आगे बढ़ने से रोका जा सके और सही समय पर उचित नंबर का चश्मा लगाकर उस दृष्टि दोष को दूर किया जा सके। कई बच्चे बार बार सिर दर्द होने की समस्या बताते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर दर्द केवल आँखों से ही रिलेटेड हो या उससे संबंधित हो, कई बार सिर दर्द के कारण भिन्न भी हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी, या नींद पूरी ना होना, अधिक टीवी देखना, अधिक पास से टीवी देखना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं, तो उस तरह के अपने को दृष्टि दोष के अलावा भी आँखों में कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, जैसे कि नाखूना, नासूर, मोतियाबिंद, जन्मजात मोतियाबिंद, पलकों का गिरना जिसे हम टॉसिस कहते हैं, तिरछापन आँखों में हो सकता है। इन सभी का निदान जो है संभव है। इसके लिए जिस तरह की समस्याएं हों तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके उसका समुचित उपचार समय पर करवाना चाहिए, और जो भी समस्या हो पहले अपने माता पिता को बताएं और फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ या जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं उनसे संपर्क करके अपना इलाज करवा सकें। तो बच्चों ये जानकारी आपने सुनी, जो बच्चे नहीं सुन पाए आप अपने मोहल्ले पड़ोस में उनसे चर्चा भी करें, जानकारी उन तक भी पहुंचाएं, ताकि ज़रूरतमंद उसका लाभ ले सके। बच्चों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के दिनों में हमारी आँखों का सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। अतः जब भी घर से बाहर निकलें, अगर काला चश्मा हो काले चश्मे का उपयोग करें, अन्यथा सिर पर कैप जरूर लगाएं, और जब धूप में जाएं तो अपने तौलिया या रुमाल को चेहरे पे बांधें, ताकि गर्म हवा से आँखों को नुकसान न हो, और शीतल पेय पदार्थ पीकर निकलें, जैसे आम का जूस, या फिर कच्ची केरी का पना, या फिर इमली का पना, या फिर ककड़ी वगैरह सलाद, ये अवश्य खाएं। भूखे पेट कभी बाहर ना निकलें, इससे गर्मी के प्रकोप से बचा जा सकता है। आँखों को तेज धूप और धूल से बचाना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप तेज धूप में बाहर निकलेंगे आँखों का कॉर्निया झुलस सकता है, आँखों में अल्सर हो सकता है, या आँखों में धूल के कण जाने से आँखों में नुकसान पे अल्सर बन सकता है। अतः इन सावधानियों के रखेंगे तो आप

0: अपने आँखों को भी सुरक्षित रख पाएंगे और आपकी आँखें आपको भी सुरक्षित रखेंगी। अपने आस पड़ोस में लोगों को नेत्रदान के प्रति भी जागरूक करिए कि नेत्रदान अवश्य करना चाहिए, जीते जी रक्तदान करना चाहिए, जाते जाते नेत्रदान करना चाहिए। नेत्रदान से दो या दो से अधिक लोगों को जो है दृष्टि लाभ मिलता है और नेत्रदान सदैव मृत्यु के बाद ही होता है और दो या दो से अधिक लोगों को आँखों की रोशनी मिलती है नेत्रदान से। अतः सभी लोग संकल्प ले सकते हैं, परिवारजन मिलकर भी समूचा परिवार संकल्प ले सकता है या अपने जन्मदिन या माता पिता की सालगिरह पर भी नेत्रदान का संकल्प लिया जा सकता है। धन्यवाद
1: बच्चनों। अभी हम सुन रहे थे वार्ता रंगहीनता विकार के लक्षण न जागरूकता। वार्ताकार था प्रहलाद तिरुले, नेत्र चिकित्सा सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छेगांव माखन। नाम अपना कार्यक्रम में समय जिज्ञासा को। तो आप सबका भोजन तो चटपटो खाणु बहुत पसंद होएगा बच्चा नू। ने मैं सब्जी न की अगर हम बात करें तो सब्जी में जो स्वाद आवज वो आवज मसाला न से ना। हमारा देश में सबसे ज़्यादा मसाला न को उत्पादन कहाँ होज मालूम छे गए आपको? चलो हम आपको बता देवन, हमारा देश में सबसे ज़्यादा मसाला न को उत्पादन केरल में होज। एक आज लेना एक मसाला न को बगीचो भी कहो जाएज। केरल में मसाला न की खेती बहुत समय से होती आई रही। काली मिर्च, लौंग, जायफल, दालचीनी, इलायची जैसा कई मसाला ना को उत्पादन यहाँ पर होज। आम सोचने वाली बात ये छे बच्चा नू कि ये मसाला ना को उत्पादन यहाँ ज क्यों होज, अपना यहाँ क्यों नहीं होता है? तो केरल में साल भर उच्च तापमान, भारी बारिश न उच्च आर्द्रता को मौसम रहज, जो कि मसाला वाली फसल न का लेना बहुत अच्छा हो माने जाए। साथ ही यहाँ की लाल दोमट मिट्टी न लेटराइट मिट्टी ह्यूमस न खनिज न से भरपूर होज, जो पौधा न का मजबूती तो देज साथ ही इनका प्राकृतिक सुगंध भी प्रदान करज। तो बच्चा न एका लेना यहाँ पर मसाला न को उत्पादन अच्छा होज। ना ये तो थी आज की जिज्ञासा न अब कहानी को समय। तो आज हम आप कलेन लायाज ऐसा व्यक्तित्व की कहानी जिन्न कई सामाजिक रूढ़ी नख चुनौती नख पार करीना चिकित्सा का क्षेत्र में इतिहास रचियो। वो आज भी हमारा लेना प्रेरणा स्रोत छे। तो बच्चन ध्यान से सुन जो ये कहानी हम बात करी रहा आनंदीबाई गोपाल राव जोशी की, भारत की पहली महिला जिन्ना पश्चिमी चिकित्सा का क्षेत्र में डॉक्टरी की डिग्री हासिल करी। बच्चन मात्र 9 साल की उम्र में इनको विवाह गोपाल राव जोशी से करी दियो गयो। आवा आनंदीबाई 14 वर्ष की जमत ही तम उन अपना पहला बच्चा का जन्म दियो। पर चिकित्सा का अभाव में, उपचार का अभाव में वो जो बच्चों थो वो उनका से छीनी गयो। न मात्र 10 दिन का बाद वो नवजात बालक की मृत्यु हुई गई। इन दुखद घटना न आनंदीबाई का झकझोरी न रखी दियो। उन निश्चय करियो कि एक दिन वो भी डॉक्टर बनेगा, न आरु कोई भी दूसरी महिला के साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होए ओको वो पूरो प्रयास करेगा, उनकी मदद करेगा ताकि अगर चली ना कोई भी इना दर्द न दुख से महिला पीड़ित नहीं होए। पण दो रासो थो बच्चा हूँ कि जब भारतीय महिला न का लेना पढ़नू न विदेश जानू इतरो आसान नहीं थो। लोग न का भारी विरोध का बाद समाज का तंजन का बावजूद उनका पति न उनको साथ दियो न अमेरिका का मेडिकल कॉलेज में उन न दाखिलो लियो। परिवार से दूर रही न पराय देश में रही न उन न खूब मेहनत करी, मन लगाई न पढ़ाई करी, न 21 वर्ष की आयु में उन न अपनी मेडिकल की डिग्री पूरी करी ली। जब वो भारत लौटी बच्चा हूँ तो एक राष्ट्रीय नायक की तरह उनको स्वागत करो गयो। उनका कोल्हापुर का अल्बर्ट एडवर्ट अस्पताल में महिला वार्ड की इंचार्ज नियुक्त करो गयो। पण बच्चारुन अमेरिका का प्रतिकूल मौसम न वहाँ की जलवायु न उनका अत्यधिक बीमार कर दियो। न उनकी जो रात दिन की मेहनत थी पढ़ाई करनो तो उका कारण वो धीरे धीरे उनको स्वास्थ्य खराब होते गयो। दुर्भाग्यवश उनको निधन 22 वर्ष की आयु में हो गयो। बच्चारुन आनंदीबाई को जीवन संघर्षमय थो पण उनका अटूट इरादा का कारण वो बनी भारत की पहली महिला डॉक्टर। उनकी हिम्मत आज भी लाखों लड़की नका लेना बड़ा सपना देखना न उनका पूरा करने की प्रेरणा देज। बच्चा

भाई की कहानी हमको सिखाड़ा है कि विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप हौसलों रखो, आपका हौसला मजबूत होए, तो खुद पर न विश्वास होए, तो इतिहास भी बदले जा सकज। तो बच्चन, ये थी आज की कहानी। आपका कैसी लगी हमको पत्र नका माध्यम से जरूर बताओ। जो निनका आदर्श नख अपना जीवन में उतार जो ना अब अपना कार्यक्रम में समय एक निमाड़ी गीत को। तो आओ सुनन बहन कुसुमलता दवे उनकी सखी नको गायो यो गीत।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम कोपल, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजने वाले हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब तराना फिल्म का गाना, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त।
1: इसी के साथ अब खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: ये सुनिए मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबारात आए तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं।
2: क्या बात है, क्या तो, मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग
1: तो
2: क्यों है?
1: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
2: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूं और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा,
1: वाह,
0: मुबारक का खत लिखा, और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी।
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: लगता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी,
1: वाह,
0: दूर उफक में डूब गया,
1: गया,
0: रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का जो मकसद है
1: जी जी
0: वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है, वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी।
1: क्या बात है, क्या।

0: क्यों, जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के, यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
1: क्या बात।
0: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
1: वाह क्या बात है, ये सुबीर सेन की आवाज है
0: सुबीर सेन की।
1: जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

भाई आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: ये
1: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के खजाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूँ। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
0: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्ते।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी, मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के
2: मैं कुछ पूछूंगा।
3: सवालों। हाँ
2: हैं?
3: हाँ
2: अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं, तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
3: छोटे जी, बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ
2: हाँ
3: कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
2: हाँ हो जाता है, हो जाता है ऐसा।
3: वैसे जैसे कुछ
2: तो आप तो जानबूझ करके आए होंगे
3: म्यूजिक
2: भूले
3: डायरेक्टर बनने
2: भटके।
3: आए थे तो
2: हाँ
3: हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था, तो गायक बन गया।
2: अच्छा गायक बन गए,
3: ऐसा होता
2: ठीक।
3: आया है यहाँ,
2: हाँ
3: लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
2: अच्छा
3: और ये कि फिल्म लाइन ही में लेखक बनूं ये कोई तमन्ना नहीं थी।
2: अच्छा
3: साहित्य में
2: अच्छा
3: जगह बनाना
2: अच्छा
3: चाहता था
2: ठीक।
3: और लिटरेचर ही में रहना चाहता था।
2: जी
3: कविता लिखता था,
2: जी
3: शायरी करता था, अफसाने भी लिखे,
2: वाह।
3: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की,
2: जी
3: क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था
2: ठीक
3: जिसकी जगह कम होने लगी।
2: जी
3: और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था,
2: जी
3: आखिर सिर्फ
2: बिल्कुल ठीक
3: कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था।
2: जी
3: तो उस हल्के में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी, कलम हमने कान पे रखी है,
2: हाँ
3: हमसे भी कुछ लिखवा लो।
2: हाँ ठीक
3: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते थे।
2: अच्छा।
3: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमल दा के पास ले गए। बिमल दा
2: अच्छा
3: से आप शायद नाम सुना के
2: स्वर्गीय
3: हो।
2: बिमल राय।
3: जी हाँ,
2: अच्छा
3: उन्हें हम बिमल दा कह के
2: जी
3: बुलाते थे। और उनसे मिले, वहां पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में,
2: कौन सा गाना?
3: बंदनी में, मोरा गोरा रंग ले ले।
2: वाह वाह बड़ा सुंदर गाना
3: अब छोड़िए, क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी
2: था।
3: गाने से परिचय हुआ था।
2: हाँ
3: और वो गाना लिखा और उन्हीं दिनों बिमल दा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे,
2: जी
3: काबली वाला।
2: जी
3: और मैं क्योंकि बेरोजगार था और
2: जी
3: शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें,
2: जी
3: लगा कि ये कुछ भूखा है,
2: जी
3: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल। मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा
2: हाँ
3: हूँ। तो रोजी कैसे चलती है?
2: जी
3: तो भाई जहाँ लफ्ज़ जोड़ते हैं वहाँ दो वक्त का खाना भी जोड़ते
2: सही
3: हैं।
2: बात है, सही बात है।
3: तो उन्होंने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं काबली वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ।
2: जी
3: और बड़ा अच्छा मौका था,
2: तो
3: जाहिर है हो
2: आप
3: गया।
2: वहां पहुंच गए। हो गया
3: और वहाँ असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
2: जी।
3: कि लेखक की जगह अपनी है
2: हाँ
3: लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं है।
2: अच्छा
3: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में,
2: हाँ
3: वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगी।
2: अच्छा। वहां तो फिल्म के हिसाब से
3: जहाँ
2: लिखना
3: वहां
2: पड़ेगा।
3: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा।

0: की बात है, सही
1: बात। तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे किसी धुन में गुनगुनाऊं।
0: ठीक ठीक।
1: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है,
0: हाँ।
1: तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
0: हाँ, मतलब फिर आपने निर्देशन तो, भी
1: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बिमलदा के साथ हमने
0: अच्छा
1: सीखना शुरू किया और लिखते रहे साथ में।
0: लिखते तो आप अब भी हैं और लिखते रहेंगे आप।
1: तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
0: अच्छा, तो देखिए इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना।
1: जा,
0: तो अब आप तो दोनों हैं, तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई काम के दौरान?
1: जी हाँ, दोनों शख्सियतें
0: कभी उनमें कोई क्लेश हुआ
1: जी
0: लेखक और निर्देशक?
1: वैसे छोटे जी आप तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं बीच में।
0: अरे आप ही लोगों तो से साथ बैठ के
1: दोनों का झगड़ा तो होता है, दोनों शख्सियतों का
0: होता है ना।
1: जी हाँ।
0: अच्छा,
1: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझ में
0: जी
1: वो पकड़ लेता है, इसलिए जी हाँ।
0: अच्छा,
1: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है। जो बात आप कह रहे हैं, जो ख्याल कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए, कैमरा कहीं भी रख के आप बहला तो लेंगे देखने वालों को, लेकिन वो बात बहुत जरूरी है और वहां पे आके पकड़ लेता है वो लेखक।
0: अच्छा,
1: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, तो गुलजार भाई अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है, जो पहले आपने सोच रखी थी ऐसी है या कुछ अंतर?
1: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है।
0: अच्छा,
1: और रंगारंग है।
0: हाँ,
1: और अंग्रेजी में।
0: अच्छा,
1: फैसिनेटिंग है।
0: हाँ भाई,
1: बहुत फैसिनेटिंग।
0: अच्छा,
1: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए कविता तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस पर कलम बंद कर लिया
0: जी,
1: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूँ और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूँ उसके लिए मैं अकेला नहीं हूँ।
0: अच्छा,
1: और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
0: हाँ,
1: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और दूसरे कर्मचारी टेक्नीशियंस हैं, जितने
0: सभी उसमें शामिल हैं।
1: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे न मिलें और एक सम पे धा ना पड़े तो वो बात बनती नहीं,
0: बात नहीं बनेगी।
1: तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को जुड़ना पड़ता है और सातों के सातों की उंगली वहीं पे आगे पड़नी चाहिए तब बात बनती है।
0: सही बात, सही बात।
1: इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है।
0: सही बात,
1: क्योंकि एक काम करने के लिए फिर मुझे वो दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है। हाँ। उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती हैं, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है। तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल हाँ। जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं वो फिल्म में एक में जुड़े हुए हैं,
0: एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधाड़, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना।
1: बहुत चर्चा।
0: तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
1: सर, इसके विचार दो तरह से हैं।
0: पहली तरह
1: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता रहा।
0: अच्छा,
1: तो जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी, मुझे ज्यादा साफ सुथरी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए वही लेखक का ख्याल
0: जी
1: कि भाई ये है क्या ये जो वायलेंस है
0: जी,
1: तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे।
0: अच्छा अच्छा,
1: और वो प्रोपोगेट करते रहे हम।
0: अच्छा,
1: और वो दिखा दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके वो ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें बस वो मुक्त कर दो, उसमें मदहोश कर दो और निकल जाओ।
0: ये चीज,
1: लेकिन उसके असर जो हैं वो बहुत बुरे हैं।
0: अच्छा, वो दूसरी बात हुई।
1: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है। अब वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है, अगर ये हो गई इसी तरह से
0: जी,
1: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा
0: जी
1: कि जिस जो जिंदगी हम जीते हैं क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं कि नहीं।
0: वाह वाह,
1: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: वाह,
1: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
0: जी।

0: बनावटी रहेगा।
1: हाँ ठीक
0: और
1: ठीक,
0: ये इस तरह की फिल्में निहायत बनावटी लगती हैं, जिस तरह के डेंस, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो
1: जी,
0: जो डेंस और वो स्मगलर्स के डेंस लगते हैं और जो देखते हैं फिल्मों में
1: जी,
0: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे।
1: अच्छा,
0: शायद
1: अच्छा,
0: हों कहीं, मेरी अच्छा, नजर से नहीं गुजरा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
0: जी फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है, आज से आज की मेरी नौकरी अच्छी पक्की हो जाएगी।
1: अच्छा गुजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्में मेले देखे हैं, अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे
0: जी,
1: तो वहाँ यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है, यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहाँ के लोगों के क्या विचार होते हैं?
0: खास तौर पे ताशकंद में
1: जी
0: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
1: अच्छा,
0: बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
1: अच्छा,
0: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
1: हाँ,
0: वो वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे एक तो राज कपूर साहब
1: जी,
0: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से यहाँ
1: यहाँ पे। वाह,
0: और जो नए अदाकार वहाँ गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
1: वाह वाह,
0: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहाँ दिखाई गई, जगह जगह गए हम
1: जी,
0: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
1: अच्छा,
0: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद
1: जी,
0: लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहाँ बेच सकें।
1: अच्छा,
0: या
1: अच्छा,
0: उनके सौदे किए जा रहे थे या बातचीत
1: अच्छा,
0: चल रही थी।
1: अच्छा,
0: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी कारामद है,
1: बिल्कुल कारामद है। और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी अगर ऐसे ही तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
0: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है,
1: हाँ, है ना?
0: और
1: हाँ,
0: दोनों को जांच लेना चाहिए।
1: हाँ, जांच लीजिए।
0: कर सकती में तो ये है कि हर फिल्म
1: जी
0: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
1: ठीक,
0: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
1: जी,
0: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
1: ठीक,
0: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगी या एक बार तो ये महसूस होने देंगी कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची,
1: वाह क्या बात कही,
0: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपकी कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
1: ठीक,
0: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ और ये, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहाँ तक पहुँचना है या क्या करना चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है
1: जी।
0: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है।
1: अच्छा,
0: लेकिन पहुंच कम हुई है।
1: हाँ ठीक है, तो
0: मतलब उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद होगा।
1: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई, आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे जो कदम रखा था गाना लिखा था
0: जी हाँ,
1: और आप कवि हैं, शायर हैं
0: जी हाँ,
1: तो हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाए आपकी, आपकी जबानी तो क्या हर जाए।
0: छोटे जी, हर्ज तो कुछ नहीं
1: जी,
0: अच्छी बात है,
1: अच्छी बात है ना,
0: अगर उन्हें अच्छी लगे।
1: अरे लगेगी साहब, जरूर लगेगी।
0: नज़्म में आपको सुना देता
1: अच्छा
0: हूं और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
1: हाँ, पहुंचे रहेगी।
0: वो जो शायर था,
1: अच्छा वो जो शायर था,
0: बहकी बहकी सी बातें करता था, मेरी तरफ ना देखिए, वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें।
1: वाह,
0: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें, और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो,

0: कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुलजार भाई, आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से
0: आपका।
1: और आप समझो समय अभी हो रहा है तो अब श्रोताओं
0: फिर मिलेंगे, फिर
1: मिलेंगे। अच्छा, नमस्कार,
2: इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे छोटे।
3: मुसाफिर हूँ यारो।
4: न जाने कितने बरस पहले गुलजार साहब से की गई ये बातचीत संग्रहालय से निकालकर मैटिनी शो में मैं आपके लिए लेकर आया था, और अब गुलजार साहब के इस गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। परिचय फिल्म का गीत आर डी बर्मन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज।

0: बैठी नहीं शो कर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों के नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई

0: में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आइए सुनिए यादों की महफिल।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: योगेश के बोल थे सलील चौधरी की तर्ज फिल्म का नाम अन्नदाता।
1: जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगी, गुजर जाए दिन दिन।
0: दिन की इस भागदौड़ में 12:38 विविध भारती सुरीला सफर।

मेहरबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत नीरज का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी और लता मंगेशकर की आवाज। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग, आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की जो इबारत है वो है, कितना अच्छा हो कि आ जाए रिमझिम फुहार, बारिश सिर्फ मौसम नहीं बूंदों का है त्योहार, बादल की डोली पर आती है बरखा रानी, मन झूम उठता है जब बरसता है पानी, तपती धरती कर रही शिद्दत से इंतजार, कब छाएंगे मेघा कब होगी बूंदों की बौछार, इस बार सावन ऐसा आए घटाओं के संग खुशियां लाए, चलो बारिश का त्योहार मनाएं, हम सब मिलकर बारिश के गाने गाएं, आसमा अब के धरती पे लिख दे हरी कहानी, झूम के छाए घटा और टूट के बरसे पानी। अब समझ गए होंगे कि इतने सारे शब्द हैं जिनके जरिए हम गानों की डोर को तान सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कौन कौन से शब्दों पर आज गाने हो सकते हैं, पर यह तो तय है कि आज बारिश के इंतजार की बात है और इतने सारे शब्द जिन पर बहुत सारे गाने हो सकते हैं। सबसे पहले वो बात जो हमारी और आपकी, हम सबकी बात है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहला गाना जो है वो गाइड फिल्म से आ रहा है। गाइड फिल्म किसके उपन्यास पर बनी थी, एक तो ये बात, दूसरी देवानंद और वहीदा रहमान के किरदारों के नाम क्या थे इस फिल्म में।

जरा सोचिए कि बिल्कुल जरा सा, 2 मिनट का ये गाना है, लेकिन ये गाना बारिश के लिए हम सबकी पुकार को एक तरह से आवाज देता है। और बहुत सारे श्रोताओं के आज की इबारत को लेकर कमेंट्स आए हैं, और इसके अलावा हमारे सवालों को लेकर भी बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, और ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आपने जैसे गाइड फिल्म का गाना सुना, लमेग थे, इसी तरह का एक और गाना था, आपको बताना है फिल्म का नाम।

पलकों की छाँव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा, पलकों की छाँव में फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छाँव में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियां इससे पहले देखी थी? और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद एसडी बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है, आई बहार आई बरखा बहार करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाज़ा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है। बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है। मिट्टी की पहली सौंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं।

हैं, और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में, और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है, केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज़्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खयाम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है और हालत ख़राब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में दिखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से, वाकई बहुत गर्मी है, उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है, दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा जाला खोटा पाउसाला मोटा, जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीला सफ़र की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपेले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने है।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना, और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज़्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूँ, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज़ कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है, एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नज़र आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नज़र आते हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है, बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफ़ी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नज़र आते हैं, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। मरीन ड्राइव नज़र आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नज़र आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नज़र आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं, पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रानंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बर

बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारी वारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहां प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है। वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते, और जब वो चली जाती तो उसे रोकते। बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया, और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मज़ा आया, और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनों के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने, इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं, जैसे निस्दिन देख रहे हों बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नज़रों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनकी नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ, और आपको वहाँ वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं, वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में हैं और बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती है कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर गरज रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतज़ार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफ़र कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है। यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज़्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूँ। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं, इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार,

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज़, फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है, शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है, बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरू सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता है लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतज़ार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीज़ें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी। ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

अभी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन भाई, खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसों भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है, और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

0: समझ में आया आपको कि ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया। और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीले सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो, उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहें फैला लें और जितना चाहें सिकोड़ लें, चाहें तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहें तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

ये बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है, पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए। जैसे ही वो मुड़ती है, कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है, पर व्यर्थ, संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है, वहां ना पूर्णता है ना अपूर्णता। फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है। हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते। उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

मौसम। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में श्योपुर, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी समेत कई जिलों में कल आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित ओंकारेश्वर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल ओंकारेश्वर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगरमालवा जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों के तहत कल जिले के ग्राम बापचा, डोंगरगांव, सुधवास, सोहतकला और सुसनेर में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए और शिवपुरी जिले के पोहरी में कल संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन उप आपदाओं की तैयारी के संबंध में विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे, हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया

0: की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की

0: नियुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
1: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है, न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के

0: सौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

जी आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
2: मनचाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाहे गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत, फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत
2: मनचाही गीत
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
1: क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रही हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के

0: पत्थर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी,
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी। एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यही विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, भीष्म, भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: राजकुमारी, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु। सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है, वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं हस्तिनापुर।

0: एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी।
1: देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
2: कुरु वंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
3: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
2: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
3: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनि के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
2: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: वंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने ही हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराज धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मांत सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं।

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?

0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहाँ? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
0: गांधारी।
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ, राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ, आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: फिफ्राश्ट।
1: ओह, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
0: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
1: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
0: क्या।
1: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
0: क्या हुआ, गिर पड़ी?
1: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
0: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
1: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
0: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताक्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा

0: कमल हरिन भ्रमर न जाने किस किस से दी थी
1: महाराज।
0: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूँ लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी
1: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया
0: क्या?
1: महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
0: क्या?
1: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है, मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
0: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी, मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया, यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
0: हूं। गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा, ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सच, असहनी है ये सच।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
2: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
2: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
2: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
2: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
2: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
3: कंधारी,
2: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
3: सुना तुमने कंधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया है।
2: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
3: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
2: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
3: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
2: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
3: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
2: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता

0: आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए।
1: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी, यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
0: अर्थात हस्तनापुर का भावी शासन?
1: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
0: तो महाराज ये तो अनर्थ होगा।
1: धैर्य रखो देवी गंधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
0: महाराज,
2: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
1: कहो सूत।
2: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: अब हमें अनुमति दो देवी गंधारी, ईश्वर कल्याण करे।
0: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश।
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती। किस पर क्या है?
0: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ है, उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुने की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण।

0: रहा है।
1: ये क्या कह रही हो गंधर?
0: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
1: जानता हूं गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
0: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
1: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
1: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
1: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
0: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
0: अर्जुन ने?
1: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
1: कैसे?
2: लाक्षागृह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
1: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
0: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन स्कूल
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्व आकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जुड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना,
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
0: करेक्ट,
1: आरडी बर्मन साहब का, और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट,

0: उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना
1: हाँ
0: और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
0: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
1: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो उन लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी। एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं।

सॉन्ग. इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था. लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी. एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी. तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था. आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल. एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले. ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था. वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था.

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पर, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफर की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे यू नो डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिखकर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही,
0: इस तरह के क्या? क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे। गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोच कर, या साहिर लुधियानवी के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट, ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है? सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं
0: किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको।
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग यू नो डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस कर तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वाज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आप

0: को एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो नो, जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीज़ों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट नहीं मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए, ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें, तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की, ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं, और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ। ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और 1 सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है,
0: दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है, ताकि वो सही मात्रा में ज़्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है, ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूँ जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूँ वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज़्यादा नहीं नाचता तो तुम ज़बरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियाँ भी दिखानी है क्योंकि कहानियाँ के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे
1: बाहों में।

0: मैं एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज़, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मज़े नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ 2-3 ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूँगा, और अगर लूँगा तो वाइड लूँगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियाँ हैं छिप जाएँ और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे

0: दिखने लगता है, तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं। लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है।
1: हाँ।
0: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वो वाला गाना,
1: अजनबी।
0: हाँ, अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: होता है।
1: करेक्ट।
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाते
1: हैं। हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना, वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़।
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, and that's the one thing that I really admire about them.

0: दूसरे रितिक शाहिद ऑल वेरी गुड डांसर्स. रणवीर ऑल्सो इज वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो इट्स नाइस टू सी द यंग डांसर्स. इट्स जस्ट दैट 19-20 का फर्क है लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता
0: ये कर पाता था.

0: अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं उनको, उसकी सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना, उसी में पैसा है, उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से, इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर, उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल, हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल। ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे। कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था। तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे, तो उनको समझ थी। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज आई वुड से इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी, वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ बट शी वाज, आई वुड से ये चार ऐसे कलाकार थे।
1: एक और नाम है पद्मिनी,
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी। सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो, सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन। और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी, वेर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झिड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं इन भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है और होता है कुछ ऐसा हाल।
1: लो जी बुझ गई बिजली प्यार की, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, हुआ खत्म फसाना दिल वाला। जिसे डस गई, जिसे डस गई।

0: बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

तेरी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम दादरा।

जब अपनी कमियों और हालातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है इस दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ये दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन। वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

0: इंदिराज सिंह ने दीप।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य। ये आकाश
2: बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

और आज के चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं गुलजार का लिखा हुतुतु फिल्म का गाना, संगीत विशाल का है, आवाजें लता मंगेशकर हरिहरन और साथियों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की

0: सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश

0: से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य, और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में 10 नंबरी फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का यह अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में है। शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म डार्लिंग डार्लिंग।

सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत, अब क्या होगा इस फिल्म से ये गीत सुनिए, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम।

0: चमर होगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

पेशे प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हाँ वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की।

की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों, वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहां उन्होंने आंधड़ैन जी शाला, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की

बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पहनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी।

कांचन गंगा, छोटा जवान और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंध्रयांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा कि वाह।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूब कर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

तुमसे मिली तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा

वह मैं क्या मांगूं उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगूं उस खुदा से, और किसी चीज़ का तलबगार वो भी नहीं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ।

पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबे जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, आंखों में नींद हो, चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से

मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती।

0: नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ

0: वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवान के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart, Robert Fico, in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains,